0: और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज बिल इल्तिजाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: वमा यस्तविल अअमा वल बसीर,
0: और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं।
1: वलल ज़ुलुमात वलन नूर,
0: और ना अंधेरा और रोशनी।
1: वलल ज़िल्लु वलल हरूर,
0: और ना साया और धूप।
1: वमा

तक ऐब मेरे उते पाई पर्दा तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी दिन महशर ना

0: ऊपर हो, तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
1: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
0: प्लाट बनाए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: सबसे प्यारा FM 100 हमारा।
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

टेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा। बुकर पे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
2: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।

0: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: The real station for real people. 100 FM.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This program is brought to you by
4: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition. Price सिर्फ 64,49,000.
5: FM 100.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100 मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
8: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
10: This program is brought to you by
11: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
12: It's 24 hours non-stop vibration connecting you, connecting, holding you, holding with FM 100.
13: FM 100. FM 100.
10: This program is brought to you by
11: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.

0: सकती है। तो अगर कोई इसके बारे में ज्यादा इंक्विजिटिव हो, सोच रखता हो, तो फिर उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। घर पे इंस्ट्रूमेंट हो, उसको ये बताया हो कि भाई किस तरह प्रॉपर चेक करना है, हफ्ते में एक या दो दफा चेक करे और देखता रहे। और अगर ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रेंज से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए तो उसकी दवा को हम कम भी कर लेते हैं और फिर बाज़कात खत्म भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी तरफ ये होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा है तो वो रिकॉर्ड से पता चल जाता है, और इससे पहले कि ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो नुकसान पहुंचाए, आप उसकी दवा में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसके मुताबिक उसको अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। क्योंकि अगर अंडर कंट्रोल रहा या पार्शली ट्रीट हो रहा हुआ तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादा जो है वो डैमेज कर सकता है, फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है, ये सारे डैमेज आ सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आपने गौर फिक्र करना है। सो मैं बहुत शुक्रिया चाहूंगी सर आपका और आपकी मालूमात का।

0: सकती है। तो अगर कोई इसके बारे में ज्यादा इंक्विजिटिव हो, सोच रखता हो, तो फिर उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। घर पे इंस्ट्रूमेंट हो, उसको ये बताया हो कि भाई किस तरह प्रॉपर चेक करना है, हफ्ते में एक या दो दफा चेक करे और देखता रहे। और अगर ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रेंज से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए तो उसकी दवा को हम कम भी कर लेते हैं और फिर बाज़कात खत्म भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी तरफ ये होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा है तो वो रिकॉर्ड से पता चल जाता है, और इससे पहले कि ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो नुकसान पहुंचाए, आप उसकी दवा में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसके मुताबिक उसको अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। क्योंकि अगर अंडर कंट्रोल रहा या पार्शली ट्रीट हो रहा हुआ तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादा जो है वो डैमेज कर सकता है, फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है, ये सारे डैमेज आ सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आपने गौर फिक्र करना है। सो मैं बहुत शुक्रिया चाहूंगी सर आपका और आपकी मालूमात का। जो
2: खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 सालों से आपका एतमाद।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
7: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
6: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
8: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
9: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
8: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
10: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
16: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
17: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
18: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
19: नई स्कीम,
15: कमिटी,
18: लाड बनाए फरो।
15: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 ट्रिपल फाइव

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
1: आसानी से पैसे बढ़ाओ with Easy Paisa Digital Bank. Easy वाला बैंक.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
3: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ. ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है. ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है. अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है. वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं.
4: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64 lakhs 49,000.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: Wow.

0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: आसानी से पैसे बढ़ाओ with Easy Paisa Digital Bank. Easy वाला बैंक.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
0: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Yeh paigham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: रोस्ट।
1: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।

0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साला एतमाद।

0: था।
1: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
0: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है।

0: गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
1: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
2: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
3: Sivan Stone, ek aisa program jo guzashta 17 saal se FM 100 ke listeners ke liye pesh kiya ja raha hai, jisme mahir ilm-e-nujoom Dr. Jaleel Aslam sitaron aur patthron ki roshni mein लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011

0: If you want to listen to the best music, then FM100 is the right choice.
1: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मयूद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पर बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
4: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: रास्त। आज मंडी में बकरे और गाय, आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराए रास्त।
1: FM 100

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। सूरह अनफाल।
3: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
7: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियो सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पर बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो, तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
8: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।

0: 1FM, your location for maximum music.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
2: माय हार्ट

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं.
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी.
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं.
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती. मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता.
5: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है. खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं.
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो.
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान. डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी हुकूमत पंजाब.
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
10: लाड बनाए फरो.
11: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
12: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें.
13: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ. ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है. ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है. अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है. वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं.
14: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
15: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के

0: आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: अंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना। घर पे

0: पहले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: Around the world.
4: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.

मैं आपकी आरज़ू इरम शहज़ादी और आप सुन रहे हैं FM 100% प्रोग्राम सिवाच टोन, जो कि कई सालों से पेश किया जा रहा है, जिसमें मशहूर माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपको सितारों के मुताबिक जिंदगी की उलझन से निकलने का तरीका बताते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक जैमस्टोन के जरिए, एक पत्थर के जरिए वो एक नगीना ही आपको हीलिंग देगा, जो कि सिवाच टोन से मिलेगा। सिवाच टोन का नंबर है 0333-555-001-0334-22-3122-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0333-555-001-0 माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपके हाथों की लकीरों की मदद से आपकी मुश्किल को भांप लेते हैं। यूं वो आपको सिवाच स्टोन का लकी जैम स्टोन बताकर रास्ते आसान बना दे

0: वॉच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
1: शिवाज स्टोन जो कि आपका जाम स्टोन लकी स्टोन का प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी किस्मत अपनी तकदीर के बारे में पूछते हैं। तकदीर किस तरह से पूछ सकते हैं? इस तरह से पूछी जा सकती है। अब ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि मौसम का हाल क्यों पूछते हैं? महकमा मौसमियात ने कहा 24 घंटे के अंदर बारिश होगी, बारिश हुई, कहीं कहीं रिमझिम हुई, कहीं नहीं हुई, बारिश तो हुई। तो जब मौसम का हाल बताने वाले मौसम का हाल 90% बता देते हैं, इसी तरह जो सितारों की के इल्म को जानते हैं, जो न्यूमरोलॉजी, हॉरिस्कोप, स्टार्स को समझते हैं, जिन्होंने इस पर रिसर्च बहुत की है, वो भी आपको आपकी तकदीर के बारे में बता सकते हैं। आपके बारे में ये बताया जा सकता है कि आपका अगर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, आपका सही नाम जो बहुत नाम कॉल किया जाता है, और आपकी मदर नेम के मुताबिक आपको ये बताया जा सकता है कि आप किस मुश्किल में है, किस उलझन में है, आप क्या करना चाह रहे हैं, तकदीर ने आपके लिए ये लिखा है और आपका रास्ता कुछ और लिए बैठे हैं। वो लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो काम उनके नसीब में नहीं होता, इसीलिए बहुत स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी लक में तो होता है ब्यूरोक्रेसी। अब किसी बच्चे ने ब्यूरोक्रेट बनना है लेकिन वो बार बार डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, बट इन वेन, फिर वो फेल हो जाता है। इसका मतलब कि तकदीर ने आपके लिए ये नहीं लिखा। अगर सारी दुनिया ही डॉक्टर बन जाए तो मरीज कहां होंगे? मरीज तो होंगे ही नहीं। सारी डॉक्टर होंगे तो पैसा कौन कमाएगा, तरक्की की तरफ कौन बढ़ेगा? हर शख्स का डिफरेंट फील्ड ये कुदरत ने बना दिया है। इसलिए अपने लिए सबसे पहले तो आप अपने जायचे के मुताबिक ये पता जरूर कीजिए कि आप किस उलझन में हैं और उस उलझन का हल क्या है, और उस उलझन का हल शिवाज स्टोन से आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है। अभी शिवाज स्टोन के प्रोग्राम में आप लाइव कॉल करेंगे और एक सेकंड में एक क्वेश्चन आप पूछिए और देखिए कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको जवाब मिलता है आपके एक क्वेश्चन का। इसके साथ साथ शिवाज स्टोन आपके लिए स्टोन रिकमेंड करता है कि आपने स्टोन कौन सा पहनना है। अब पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमें लव मैरिज का स्टोन बताएं।
2: सही,
1: लव मैरिज का स्टोन बताएं कि हमारी शादी हो जाएगी, वो नहीं होगी, होगी नहीं होगी, और बहुत से लोग इसमें दिमाग अपने खराब किए बैठे हैं, अपने जहन खराब किए बैठे हैं। तो फिर मैंने आखिर सोचा कि क्यों ना लव मैरिज का स्टोन आपको बता दिया जाए। अब लव मैरिज के स्टोन में हर्डल ये है कि अगर आप उस

0: एमरल्ड स्टोन जो कि सिवाच स्टोन का है वो आपने पहनना है, और ये जो स्टोन है ये नेशापुर का है, यानी ये नेशापुर के इलाके का स्टोन है जो इसमें कामयाब होगा, और ये सिर्फ आपको सिवाच स्टोन से बहुत आसानी से मिलेगा। 15 कैरेट का एमरल्ड आपने दोनों ने पहनना है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों पहनेंगे, और इसके पहनने का तरीका ये होगा कि जुमे वाले दिन पहनना है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, जुमे के बाद आपने इसको पहन लेना है, और पहनते ही आपने किसी एक शख्स को खाना खिलाना है, मेल ने भी खाना खिला देना है और फीमेल ने भी किसी को खाना खिलाना है। अब खाना किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी आप भिखारी को भी खाना खिला सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, कोई घर में गेस्ट आए दिल में ये नियत कर लें कि मैं खाना एमरल्ड जो मैंने पहना है मैं उसके लिए उसको हम खाना खिला रहे हैं, आप वो खिलाइए, और 40 दिन तक वो स्टोन आप दोनों के हाथ से नहीं उतरेगा। 40 दिन के बाद आप दोनों ने वही स्टोन एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना है, मेल ने अपना स्टोन फीमेल को दे देना, उन्होंने पहन लेना, फीमेल ने अपना स्टोन मेल को दे देना, वो पहन लेंगी। इस तरह से 40 डेज का जब ये अमल कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा कि दोनों के वालदेन बेचैन हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है कुछ भी है हमने रिश्ता यही करना है, तुम लोगों ने कह दिया तो हमने रिश्ता बस मान लिया, बस ठीक है जिंदगी तुमने गुजारनी है हमने नहीं गुजारनी। और ये रिसर्च के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्टोन यहाँ पे काम करता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लव मैरिज के बजाय अपने वालदेन की बात माने और आपके पेरेंट्स जहां कहते हैं वहां रिश्ता कर लें, इसलिए कि फिर जिम्मेदार आपके पेरेंट्स होते हैं, और जिम्मेदार तो असल में ये तकदीर के मामले हैं, ये तकदीर आपको अच्छी तरफ लेके चलती है, जब जिनका यकीन बहुत स्ट्रांग है वो तो कभी नाकाम नहीं होते, और जो डावाडोल रहते हैं अपनी तकदीर के साथ वो हमेशा लड़खड़ाते ही रहते हैं, वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कामयाबी अगर लेनी है तो आपको यकीन के साथ आगे बढ़ना होगा, और यकीन के साथ ही तो इंसान बहुत दूर तक पहुंच जाता है, बहुत बुलंदी को छू लेता है। अब लव मैरिज का स्टोन मैंने आपको बता दिया, अभी आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये सवाल है सिवाच स्टोन से मिलेगा।
1: सिवाच स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको सिवाच स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाच स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने ज़ोडिक हॉरोस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप सिवाच स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाच स्टोन SVAHJSTONE, और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है DR Jaleel Aslam Official, इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल 1 घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। जी इरम शहजादी बड़ी तेज लाइनें ब्लिंक कर रही हैं, और लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ चुके होंगे, लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में फोन्स की लाइनें बड़ी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं, तो मेरा ख्याल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, और फौरी अपना सवाल भेजते चले जाएं। आप 1 सेकंड में मैं आपको एक जवाब दूंगा, लेकिन डिटेल प्लीज जरूर देनी है। डिटेल क्या है? आपका नाम, आपका निकनेम, आपकी वालदा।

0: नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ अपना नाम बता दें और सिर्फ अपनी वालदा का नाम बता दें, आप जिस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हैं सिर्फ मुझे वो बता दें, और आप पैदा कहां हुए थे ये बता दें, किस इलाके में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मैं आपको एक सेकंड में आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आपकी लाइन ना मिल सके तो नाराज नहीं होना, आपने फौरी तौर पर सिवाज स्टोन के नंबर पर रब्ता करना है, वॉइस नोट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके लिए आपको 0333-555-0011 को डायल करना है, और दूसरा नंबर 0334-222-3122 को आप डायल करेंगे और वॉइस नोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं फौरी तौर पर आपको जवाब देता चला जाऊंगा। जी चलिए, हमारा पहला कॉलर कौन है?
1: हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से?
2: मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ
1: जी। कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: लाहौर से।
1: जी क्या पूछना चाहेंगी?
2: मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहूंगी।
1: बेटे का नाम और तारीख पैदाइश बताइए।
2: उसका नाम है फखरुल हसन आरिफ।
1: ठीक है।
2: और 17 दिसंबर 2003 उसकी डेट ऑफ बर्थ है।
1: सवाल क्या है आपका?
2: ये बीमार रहता है, अक्सर बीमार रहता है, और पता बहुत मेहनत से है लेकिन इसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो इसके लिए पूछना है।
1: चलिए डॉक्टर साहब, आपको अच्छा सा स्टोन रेकमेंड करेंगे, वो आप उन्हें जरूर पहनाइएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। सुनते रहिए, आपको डॉक्टर साहब ऑनियर जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: जी मिसेज आरिफ साहब, आपके बेटे बीमार रहते हैं, आपने कभी ऐसा चेक किया कि इनका ऑरा बहुत वीक है? ऑरा क्या होता है? ऑरा जिनका वीक होता है उनको बहुत जल्दी नजरें बंद लग जाती है। आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, उसका बहुत शौक है आगे बढ़ने का, बहुत पढ़ने का शौक है, और आप भी चाहती हैं, लेकिन आप बहुत डांटती हैं, आप उस पर इतना प्रेशर डालती हैं कि आपके प्रेशर डालने से वो बच्चा नॉर्मल भी जब होता है तो वो स्टबन हो जाता है, और उसके साथ साथ वो वीकनेस की तरफ जाता है और उसका दिल पढ़ने को नहीं करता, वो बीमार हो जाता है। बच्चे को अगर लेकर चलना है तो आपको बड़ी मोहब्बत से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑरा इतना वीक है कि आए दिन वो नजरें बंद में आ जाता है, जब नजरें बंद होती है तो छींकें शुरू हो जाती हैं, उसको फीवर शुरू हो जाता है, उसका सर में दर्द शुरू हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम आपके बेटे के साथ आ रही है। इसके लिए आप यकीनन मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर दे रही होंगी, वो आप देते रहिएगा। मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूं आपके बेटे की नजरें बंद से हटने के लिए। आप इनको गले में सिवास्टोन का कैट आई पहना दीजिए, जो कि सिर्फ 13 कैरेट का होना चाहिए, वो आप इनके गले में पहना दें। जिस वक्त भी आप फील करें कि अब ये इसकी तबीयत खराब हो रही है, आप चाहें तो उस वक्त ही सिर्फ पहनाएं। जब उस वक्त पहनाएंगी तो तकरीबन 6 मिनट तक आपके बच्चे पर एक हल्का सा वजन रहेगा, उस 6 मिनट के बाद आपको बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ने को दिल करेगा, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगा, और आप भी हैरान होंगी कि ये कैसी रेमेडी है कि आपका बच्चा बिल्कुल पुरसकून होता चला जा रहा है। ये रेमेडी आपके बेटे के लिए है कि जब बीमार होता है, बार बार वीक होता है, और आप भी इसके साथ साथ आपको ये कॉपरेट करना होगा कि आप अपना लहजा उसके साथ बहुत धीमा रखें, उस पर प्रेशर बहुत न डालें। आपके प्रेशर की वजह से 50% आपके प्रेशर का ताल्लुक है और 50% जो है वो नजरें बंद का ताल्लुक है, स्टोक और वीक है उसका, इसलिए आप ये उसको पहना दें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये आपको बहुत आसानी से सिवाज स्टोन से मिलेगा।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम
1: अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
4: जी मैं हुस्ना लाहौर से।
1: जी हुस्ना, क्या पूछना चाह रही हैं?
4: मुझे डॉक्टर साहब से 4 साल हो गए मेरी शादी को, लास्ट में हुई हूँ, वो पूछना चाह रही हूँ मैं डॉक्टर साहब।

0: dedication for maximum music.
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
4: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। Our price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So, jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.

0: पाकिस्तान।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
5: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त की इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: साथ समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: हाथ उठाना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सो ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम
4: कमिटी
5: लाड बनाए फरो।
6: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: एक नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अदवियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
8: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
9: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: लाड बनाए फरो।
3: ये मुफ्त की इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राब्ता 0333-555-0001।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
8: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
7: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: It's 8:15 PM. This time check is brought to you by
3: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
11: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील, और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।

0: PM. This time check is brought to you by
1: आसानी से पैसे बढ़ाओ with Easy Paisa Digital Bank. Easy वाला बैंक.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें.

0: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राबता 0333-555-0011।
2: This is FM 100.
3: Around the world.
4: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
5: FM 100.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ो और ना आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। सूरह बनी इसराइल

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
2: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मयूदीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
3: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।

0: Pakistan.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
4: Biggest hit.
3: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100.

0: location for maximum music.
1: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राबता 0333-555-0001।
0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding,
4: with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: spinning track after track, track after track of the music you love with the best DJs on the planet. Radio 100.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। Our price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So, jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: One station.
4: 100 FM.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
5: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
6: connecting,
5: holding you,
6: holding
5: with FM 100.
7: FM 100.
8: FM 100.

0: 100 FM, the music machine.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: टॉक इज ऑफ,
5: म्यूजिक इज ऑन।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक खामोश कातिल, एक सांप के तौर पे बताया जाता है। ये वो बीमारी है जो आपको पता भी नहीं होता और आपके जिस्म में पैदा हो जाती है। अगर खुदा ना करे आपका ब्लड प्रेशर एक खास हद से ऊपर हो तो इसका बहुत आसान और सहल इलाज है, वो है वर्जिश और उसके बाद खुराक का ध्यान, जिसमें नमक को रोका जाता है और ऐसी खुराकें रोकी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करती नहीं।
2: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना। तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition. Price सिर्फ 64,49,000.
5: This is your music.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This program is brought to you by AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।

0: favorites of yesterday and today.
1: Listen while you work. 100.
2: सिवान स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011